खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनिए। अलमेर और द्रोंतन से परिवार गोपी बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 91 साल के आयु में एनन नेखंतखियार और बेटी सिंथिया गोपी की मां, दामाद रंजीता सरफी के सास आर्मांडो भोला और शरण भोला के नानी, संगीता भोला गयाधर की ननिया सास, अम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेनस्ट्रात की रहने वाली श्रीमती इतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। पारामारीबो में पहले फ्लमिंगो स्ट्रात के निवासी थी। अलमेर और द्रोंतन से परिवार गोपी

बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 91 साल की आयु में ईन नेखंतख यार औद बेटी सिंथिया गोपी की मां दामाद रंजीता सार्फी के सास अरमांडो भोला और शरण भोला के नानी संगीता भोला गयाधर के ननिया सास अम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेन स्ट्रैट की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तो की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज रात के 6 बजे से 7:30 बजे तक फनाफन फन जैसूर तो थालफाक उत्फर्ट सेंट्रम वेंसखार्द के मुर्दालय ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन दोंद्रदख 4:30 किए जाएंगे वेस्टखार्द क्रेमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में।

और मृत्यु समाचार सुनिए। अलमेर से परिवार शक्कौरी गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल के आयु में एनन नेखंतखियार औत नातिन रेशमा शकौरी गोपाल की नानी और नदमाद विनोद शकौरी की ननिया सास रिशानी और रितिका शकौरी के परनानी अम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेंस रात की रहने वाली श्रीमती इतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अलमेर से परिवार शकौरी गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में एनन नेखंतख यार औत नातिन रेशमा शकौरी गोपाल की नानी नदमाद विनोद शकौरी की ननिया सास और लड़कन रिशानी और रितिका शकौरी की परनानी अम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेंस रात की रहने वाली श्रीमती इतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक वेंसखार्ड क्रिमाटोरियम के मुर्दालय ओक मिरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन दोंदरदाग हलफ 4 किए जाएंगे वेंसखार्ड क्रिमाटोरियम ओक मिरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 57 51 55 75 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार गोपी और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Maastricht, heb je bij Boxmeer nog een half uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
4: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।

नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, फुआ फुफा, बहन और ए भाई, तू भी सुने है तो उजाला रेडियो।

Aadje, boudoir 17 tarik, June, vandaag 17 juni komt. Al meer keer in Nivelle Anand en Shanta, Chandrika Sinke, Batiswa, 32e, wie waagt die gentie hem? Is goed gemaakt, ik doe schrikkelijk die lojaanse pjaar, maar heb het gezegd naar mijn koffermaatje. Jullie programma, ik hou naar mijn maap koos van Anand जो कि आनंद मांग के है अपने प्यारी प्यारी लीफ लीफ फ्राउ शांता के लिए एंड नाम शांता फॉर लीफ लीफ मान आनंद के लिए 32वां विवाह के जयंती के खुशी के मौके पर दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ ये नगमा फरमाइश करें।

बुधवार 17 तारीख जून को बड़ी खुशी का दिन है, खुशी की बात है क्योंकि आनंद चंद्रिका सिंह एंड श्यामता चंद्रिका सिंह का आज 32वां विवाह की जयंती है। ट्वेन दैट ह्यूलिक्स यूब्लेम हाँ Je moet het elke dag vieren, toch? Auraatje is goeie gemaakt bij Anand en Shanta. Ik doe ze rikkeli door Janse Piaar of Mahabbat gezet naar mijn koffermaatje. Is waar Anand nee, Anand Chandrika Singh neemt vermaatje. Heb je piari piari beauty queen kli, piari piari dharmpadni kli. Shanta kli. Batiswa vivah ke jenti ke khushi ke mauke par ye shandar shinahma.

उजाला रेडियो के जरिए आपने ये शानदार सिनेमा सुने हैं जो कि फरमाइश किए गए हैं नामस आनंद चंद्रिका सिंह और शांता चंद्रिका सिंह। इन दोनों की आज 32वां विवाह की जयंती है। खुशी के मौके पर नामस आनंद फॉर लीव लीव फ्राउ शांता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ पेश किए गए। यहाँ तक कुछ फरमाइश हमने पेश की है आज के प्रोग्राम में। आनंद एंड शांता नामस द हेल टीम फॉर उजाला रेडियो फॉर हार्ट गेफेलिसिटेड आप दोनों के 32e huwelijks jubileum ke khushi ke mauke par en namens al je lieve lieve kinderen namens Pooja, Sapna, Jaya en Vyas ke taraf se en do pyare pyare damad hain Radmi hai tu meri aur Suraj ke taraf se bahut bahut badhaiyan aur shubhkamna pesh kiya ja raha hai pyar मोहब्बत के साथ बधाइयां शुभकामना पेश है।

दोस्तों, तो कैसे नींद आए हेमंत कुमार की आवाज में। आप सुने फिल्म का नाम बिन बादल बरसात और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, हमारा हिस्सा का प्रोग्राम हम आरंभ कर चुके हैं और आपको भी स्वागत है सुनने के लिए।

जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए तब तुम याद आए, लता जी की आवाज में आप सुने फिल्म का नाम तकदीर। एक बार फिर लता जी हिस्सा ले रही है।

जब से बलम घर आए, गीत आप सुने लता जी से और फिल्म का नाम आवारा। उजाला रेडियो है ये।

सूरत आपकी सुभानअल्लाह। फिल्म छलिया से, हाँ फिल्म छलिया के गीत मुकेश जी की आवाज में आप सुने।

लता जी की आवाज और गीत आप सुने फिल्म नागिन से। हाँ, फिल्म नागिन से, और ये है उजाला रेडियो।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया। ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और आप लोग अब कुछ देर तक प्रोग्राम को जो सुनेंगे, इसमें विशेष करके कुछ पुराने गीतों पेश है।

0: हुजूर, अब हुजूर आवो तुम्हें सितारों में ले चलूं। और गीत आप सुने आशा जी की आवाज में, फिल्म किस्मत से, और संगीतकार थे उपेन नय्यर जी।
1: आपके
0: मोहम्मद रफी साहब।

दूर है, अब मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आप गीत सुने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में और फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएगी। ये उजाला रेडियो है।

आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब हम तुम्हें कहते हैं। साजन की बाहों में, फिल्म का नाम साजन की बाहों में। ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, पुराने गीतों के साथ

अब दो दिलों की मुश्किल आसान हो गई है, आपस में दो दिलों की पहचान हो गई है। मोहम्मद रफ़ी एंड आशा जी से गीत को आप सुने, फिल्म का नाम पूजा के फूल।

और अगर दिल कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या करोगे? फिल्म का नाम कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, और ये है उजाला रेडियो सुनने वालों, तू जाने है तो। इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें उजाला पंत NL पर। एंड न्यू पुराना सोना।

है ना सुंदर गीत। तलत महमूद एंड लता जी से प्रोग्राम में आप गीत को सुने। फिल्म का नाम उसने कहा था, उसने कहा था। अब मुकेश जी हिस्सा लेंगे।

सब कुछ सीखा हमने, ना सीखे होशियारी, तो रह गई है ना अनारी। मुकेश जी की आवाज में आप सुने और फिल्म अनारी का गीत, ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। या तू जाने है तो

0: अरे छोड़ दे सजनिया
1: नैनोवा की डोर पहले जोड़ दे।
0: बहुत पुरानी फिल्म नागिन 1954 की फिल्म नहीं खंतीन फिरों फाइव थे और या गाने वाले लता जी एंड हेमंत कुमार।

गम से ना घबराना। लता जी की आवाज में आप सुने फिल्म का नाम तावड़ हाउस। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, कुछ पुराने गीतों के साथ प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आपके लिए।

के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में एनन निहंतखियार औत। पति श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी की पत्नी लड़कन सामी रॉय जेरी शिरली क्सिंथिया और शकीता की माँ जगदीश गोपाल रंजीत असारफी आनंद रघुनाथ काला गोपी उषा गोपी और अनिता हर की सुन के सास 13 लड़कन के नानी और आजी और 19 लड़कन के परनानी और पर आजी। अम्स्टरडम लुविक्रे स्पेन्स रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है, पारामारिबो में पहले फ्लमिंगो स्रात के निवासी जो थी। अम्स्टरडम से श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी और सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 91 साल की आयु में एनन निहंतखियार औत। श्रीमान आनंद प्रसाद गोपी की पत्नी लड़कन सामी रॉय जेरी शिरली क्सिंथिया और शकीता की माँ जगदीश गोपाल रंजीत असरफी आनंद रघुनाथ काला गोपी उषा गोपी और अनिता हर की सुन के सास 13 लड़कन के नानी और आजी और 19 लड़कन के परनानी और पर आजी। अम्स्टरडम लुविक्रे स्पेन्स रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है, पारामारिबो में पहले फ्लमिंगो स्रात की निवासी थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज रात के 6 बजे से 7:30 बजे तक। फनाफन फन सेसूर टोथा लफाख एटफर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में। और अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन दोंदरदख हलफीर किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रेमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम उस दौरप में।

0: bastard.
1: अल्मेरे से परिवार शक्कौरी गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में एनन नेहंतखियार औत नातिन व्रेशमा शक्कौरी गोपाल की नानी न दमाद विनोद शक्कौरी की ननिया सास रिशानी और रितिका शक्कौरी की परनानी अम्स्टरडम लुविक्रिस्पेन रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तो की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अल्मेरे से परिवार शक्कौरी गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 91 साल की आयु में इन निहंतखियार औत नातिन रेशमा शक्कौरी गोपाल की नानी न दमाद विनोद शक्कौरी की ननिया सास रिशानी और रितिका शक्कौरी की परनानी अम्स्टरडम लुवी क्रिस्पेन रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज बुध के रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक Uitvaart Centrum Westgaarde के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन डोंडरदा 4:30 किए जाएंगे। वेस्टगार्डे क्रिमेटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में।

तेरा। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार आप सुनिए। अलमेर से अजय गोपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल के आयु में इन निहंत ख्यार औत अजय गोपाल की नानी शरोजना गोपाल की ननिया सास ऐलाश सरफियाश और शयाना गोपाल के पर आजी अम्स्टरडम लुई क्रेस्पेंसराद की रहने वाली श्रीमती इतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अलमेर से अजय गोपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में इन निहंत ख्यार औत अजय गोपाल की नानी शरोजना गोपाल की ननिया सास ऐलाश सरफियाश और शयाना गोपाल के पर आजी अम्स्टरडम लुई क्रेस्पेंसराद की रहने वाली श्रीमती इतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज बुध के रात में 6 बजे से 7:30 बजे तक सेंट्रम वेस्टहार्डे के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया ये कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन डोंडरदाग हालफीर किए जाएंगे वेस्टहार्डे क्रीमेटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 57 51 45 75 06 57 51 55 75। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार गोपी और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

यही से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम उजाला कॉफी चाय मेरा शो। यू आर उजाला रेडियो यहीं सुन मालूम मैं हूँ लॉयड महावीर और हेलो खुई मिला वेलकम ऑफ डेज वुंसडा 17 यूनी आ शाम का वक्त कितना मोई वेर है ना कितना बिसाल वेर हैगा आज 17 अगस्त है नहीं 17 अगस्त है व्हाट सेग आई नाउ इट इज वेडनेसडे 17 यूनी आज बुधवार 17 तारीख जून का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुनने वालों और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मैट आनंद चंद्रिका सिंह आज के समाचार के बारे में बहुत लुख्तिगे ऑनवर्ड हम आपसे बताने वाले हैं नाउ ik struikel een beetje over mijn eigen woorden आज है 17 तारीख जून हेडलाइंस फ्रॉम वंडाग हंड्रेडन मेंसन नाम डेल अन अ स्टिल टॉक ना हेट ट्रागिसे वर्केर्सओंगेवाल इन सेलांड वारबाय मेर्डरे स्लाख्टऑफर्स फिलन हेट WK फुटबॉल ब्लाइफ नेदरलैंड बेजिग हाउ ना हेट गेलैकस्पेल फान ओरानये टेगे जापान अनालिस्टन कैके वरुइट ना दे वोलगेंडे ग्रोप्सवेडस्ट्रैड आनस्टांडे ज़ादरदाग ओम 7 उर एन या मेसी हेफ गेस्पेल्ड मेट अर्जेंटिनिये आसेबेरेसेबेरे फ्रुकु फ्रुकु एन हेफ 3 केर गेस्कोर्ड Toen na Janet Rehling, toen na de Klega, toen de Klier. Adviseurs van het kabinet pleiten ervoor Oekraïne na een toekomstig bestand sneller richting EU-lidmaatschap te begeleiden. Innovatie en technologische onafhankelijkheid staan centraal tijdens een grote high-tech bijeenkomst in Den Haag. Den Haag mee. De G7-landen hebben in Frankrijk opgeroepen tot het staakt het vuren in Libanon en spreken steun uit voor het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De G7 kondigt nieuwe steunmaatregelen aan voor Oekraïne, waaronder extra militaire ondersteuning en strengere sancties tegen Rusland. Het Rode Kruis waarschuwt voor mogelijke voedsel- en watertekorten als gevolg van een verwachte sterke El Niño-periode. Wereldleiders spreken steeds nadrukkelijker over energiezekerheid en alternatieve handelsroutes nu de geopolitieke spanningen aanhouden. Goedemiddag Nederland, welkom bij Ujala's middag Coffee Chai Show. Aaj boedwaar, de week is halverwege, ha? Beachhaftaiga. En misschien is dit precies het moment om even rustig adem te halen. Een kop koffie of chai erbij te pakken en samen te kijken naar wat er speelt in Nederland en de rest van de wereld. Mijn Lloyd Mahabir zometeen sluit hier aan. Anand Chandrika Singh. Fijn dat je luistert. उजाला रेडियो के प्रोग्राम में हम सुनने वालों के नाम आपको सुनाने को जा रहे हैं और ये गाने वाला है राज गणेश के आवाज में हम आपको नगमा सुनाने को जा रहे हैं सॉरी फॉर कि तो कि कोई जीवन साथी मिलल हैगा या तू मांगे कोनो जीवन साथी ई जीवन में तोर ना मिलल हैगा जीवन साथी तो दोबारा जन्म लिए तो शायद मिल जाएगा मोई जीवन साथी जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा राज गणेश की आवाज में आप सुनने को जा रहे हैं गर्मा मोह से सुनिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा

वाह, कितना मोहि गाना है, कितना मोहि से भी गाया जाएगा। राज गणेश की आवाज में भी आपने सुने, उजाला रेडियो पर सुन वालों, पेश किया गया है जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और इस जीवन में ना मिलेगा तो हम फिर जन्म ले पे मिल खातिन। उजाला रेडियो है, वेलकम ऑफ दिस वोंगजमिदा 17 तारीख जून का प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग आज का समाचार आपसे बताने वाले हैं कि क्या भय रहेगा या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एंड नतीलक है वो लुख्त खोने वाले, और आज है सेफ्टी यूनिट, बड़ा मोई दिन है आज। नेम ये कॉफी ऑफ चाय दबाए एंड लाइसर ना दिन नंबर कि चलते चलते चलते चलते कभी अलविदा ना कहना, ना ना ना ना ऐसे ना करिए।

गनवा जो इस तरह से सुबह गाय से गए जैसे बनाए से गए म्यूजिकवा जैसे है गया इस गोन गवेल्डिग इट इस गोन या एन गनोट ओम नार टू लुइस्टर चलते चलते इट इस अ बीटी जैसी मार बिसाल बिसाल सुन वालो प्रोग्राम उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुनते जाइए सुनते रहना आज का प्रोग्राम हम आपसे कल नहीं मॉर्निंग इस अमित हियर इन कॉफी चाय कल अमित जयराम रहेगा van 12 tot 1. En ik ben er vrijdag weer met koffie, chai, koekoe of wat je ook ervan wil maken van dit programma. Janam janam ka saath hai tumhara hamara. Rajesh Ganesh ki awaaz mein fir hum aapko sunate hain. Isi ke saath hum izazat chahte hain. Mujhse rahiye.

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: सुनने वालों, आशा है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आए हुए होंगे। और अगर आप हमें फिर सुनना चाहें तो आपको पता ही है, उजाला रेडियो पर आप हमेशा हमें सुन सकेंगे। फिर मिलेंगे। Hoe weet je dat dit track niet goed is?
1: Nee, dat ga ik beluisteren allemaal. Maar je neemt nu op, hè?
0: Oh ja.

0: जानास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया
1: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
3: उजाला रेडियो सुन वालो, मैं हूं लॉयड महावीर, एन हेले खुद खुईदाह। आज है बुधवार, बुधवार और बुधवार 17 तारीख जून है तो सुन मोईदाह हेत वर्ष मोईदाह, और आज का दिन इसलिए खुशी का दिन है, हर एक दिन खुशी का दिन होते हैं सुन वालो। अज इन ओख्तंद वक्के वोर्ड एन यू कुंत एन दाग मेमाकन दन इज दैट मोय मेगेनोमन टॉक। उजाला रेडियो के जरिए हम इसलिए आए हैं आज जबकि बुधवार 17 तारीख जून है, दहा वो 32 jaar terug एक नौजवान के विवाह हुए हैं, या दो नौजवान के विवाह हुए हैं 32 jaar geleden आनंद चंद्रिका सिंह एंड शांता चंद्रिका सिंह के विवाह हुए हैं या सरकारी शादी हुए हैं, इन ईदर खफाल इस दत 32 jaar geleden।

0: सतरतार जिनको बड़ी खुशी का दिन है, खुशी की बात है क्योंकि आनंद चंद्रिका सिंह एंड शांता चंद्रिका सिंह का आज 32वां विवाह के जयंती है। ट्वेन दैट्स यू लुक्स यू ब्लेम हां
1: हमें
0: यू मुत इट एल्के दाग वीरन टॉक। और आज इस खुशी के मौके पर आनंद एंड शांता एक दूसरे के लिए दिलजान से प्यार और मोहब्बत के साथ नगमा को फरमाइश किए। इस बार आनंद चंद्रिका सिंह ने फरमाइश किया अपनी प्यारी प्यारी ब्यूटी क्वीन के लिए, प्यारी प्यारी धर्म पत्नी के लिए, शांता के लिए 32वां विवाह की जयंती के खुशी के मौके पर ये शानदार सी नगमा।

उजाला रेडियो के जरिए आपने ये शानदार सिनेमा सुने हैं जो कि फरमाइश किए गए हैं नामस आनंद चंद्रिका सिंह और शांता चंद्रिका सिंह। इन दोनों की आज 32वां विवाह की जयंती है। खुशी के मौके पर नामस आनंद फॉर लीव लीव फ्राउ शांता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ पेश किए गए। यहाँ तक कुछ फरमाइश हमने पेश की है आज के प्रोग्राम में। आनंद एंड शांता नामस हेल टीम फन उजाला रेडियो फन हार्ट गेफेलिसिटेड आप दोनों के 32वें huwelijks jubileum के खुशी के मौके पर en namens al je lieve, lieve kinderen, namens Pooja, Sapna, Jaya en Vyas ke taraf se en do pyare pyare damat hain Radmi और सूरज की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामना पेश किया जा रहे हैं। प्यार मोहब्बत के साथ बधाइयां शुभकामना पेश।

यहीं से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम उजालास कॉफी चाय मिदा शो। यू आर उजाला रेडियो यहीं सुन वालों, मैं हूं लॉयड महावीर। एन हेले गुई मिदा, वेलकम ऑन दिस वुंसडे 17 जून आ शाम का वक्त। कितना मोय वीर है ना, कितना बिसाल वीर है का। आज इस नाग 17 जून, आज बुधवार 17 तारीख जून का प्रोग्राम आप सुन रहे सुनने वालों। और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मैथ आनंद चंद्रिका सिंह। आज के समाचार के बारे में बहुत लुख्तग ऑनवर्ड हम आपसे बताने वाले हैं। नाउ एक सर्कल बीच ओवर माय एगन वर्ड्स। आज है 17 तारीख जून। हेडलाइंस फॉर वंडाग। होंडर्डन मेंसन नामन डेल आन अ स्टिल टोख ना हेट ट्रागिसे वर्केर्सओंगेवाल इन ज़ीलैंड वारबाय मेर्डरे स्लाख्टोफर्स फीलन। हेट WK फुटबाल ब्लाइफ नेदरलैंड बेज़िग हौ ना हेट गेलैकस्पेल फॉन ओरांजे टेगे जापान। एनालिस्टन कैके वरुइट ना दे वोलगेंदे ग्रूप्सवेडस्ट्रैड आनस्टाँदे ज़ादरदाग ओम 7 उर। एन या मेस्सी हेफ गेस्पेल्ड मेट अर्जेंटिनिया आट सेबेरे फ्रुकु फ्रुकु एन हेफ 3 केर गेस्कोर्ड। Toen na Janet Rehling, toen na de Klegge, toen de Klee. Adviseurs van het kabinet pleiten ervoor Oekraïne na een toekomstig bestand sneller richting EU-lidmaatschap te begeleiden. Innovatie en technologische onafhankelijkheid staan centraal tijdens een grote high-tech bijeenkomst in Den Haag. Den Haag mis. De G7-landen hebben in Frankrijk opgeroepen tot het staakt-het-vuren in Libanon en spreken steun uit voor het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De G7 kondigt nieuwe steunmaatregelen aan voor Oekraïne, waaronder extra militaire ondersteuning en strengere sancties tegen Rusland. Het Rode Kruis waarschuwt voor mogelijke voedsel- en watertekorten als gevolg van een verwachte sterke El Niño-periode. Wereldleiders spreken steeds nadrukkelijker over energiezekerheid en alternatieve handelsrouten nu de geopolitieke spanningen aanhouden. Goedemiddag Nederland, welkom bij Ujala's middag Coffee Chai Show. Aaj boedemar, de week is halverwege, ha? Beachhaftaiga. En misschien is dit precies het moment om even rustig adem te halen. Een kop koffie of chai erbij te pakken en samen te kijken naar wat er speelt in Nederland en de rest van de wereld. Mijn Lloyd Mahabir zometeen sluit hier aan. Anand Chandrika Singh. Fijn dat je luistert. उजाला रेडियो के प्रोग्राम में हम सुनने वालों के नाम आपको सुनाने को जा रहे हैं और ये गाने वाला है राज गणेश के आवाज में हम आपको नगमा सुनाने को जा रहे हैं। सॉरी फॉर कि तुके कोई जीवन साथी मिलल हैगा या तू मांगे कोनो जीवन साथी ई जीवन में तोर ना मिलल हैगा जीवन साथी तो दोबारा जन्म लिए तो शायद मिल जाएगा मोय जीवन साथी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। राज गणेश की आवाज में आप सुनने को जा रहे हैं। गरमा मोई से सुनिए कि जन्म जन्म का साथ है।

कितना मोहिगान है, कितना मोहि से भी गाय से गया राज गणेश की आवाज़ में भी आपने सुने है, उजाला रेडियो पर सुन वालों पेश किया गया है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा और इस जीवन में ना मिलेगा तो हम फिर जन्म ले पे मिले खातिन उजाला रेडियो है। वेलकम ऑफ दिस वुंगजाखमिदख 17 तारीख जून का प्रोग्राम में जिसमें हम लोग आज का समाचार आपसे बताने वाले हैं कि क्या भय रहेगा या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है नतीजा है बहुत लुख्त खोन रहेगा। और आज है सेफ्टी यूनिट, बड़ा मोई दिन है आज। नेम ये कॉफी ऑफ चाय दबाए एंड लाइसर ना दिन में कि चलते चलते चलते चलते कभी अलविदा ना कहना, ना ना ना ना ऐसे ना करिए।

इगनवा जो इस तरह से सवन गाय से गया जैसे बनाए से गया म्यूजिकवा जैसे है गया इज गोन गेवेल्डिग इट इज गोन या एन गनोत ओम नाउ टू लुइसन चलते चलते इट इज अ बीट जैसी मार बिसाल बिसाल वालो प्रोग्राम उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुनते जाइए सुनते रहना आज का प्रोग्राम हम आपसे कल नहीं मॉर्निंग इस अमित हियर इन कॉफी चाय कल अमित जयराम रहेगा फ्रॉम 12 टू 1 एंड आई बेन द फ्राइडे वेयर मेट कॉफी चाय कुकू ऑफ व्हाट यू ओकर फ्रॉम विल मेकर फ्रॉम दिस प्रोग्राम जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा रजेश गणेश की आवाज में फिर हम आपको सुनाते हैं इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं मौज रही है।

यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनने वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम, आप सुनते रहना। चेक ऑन वेबसाइट उजाला.nl हर एक काम काज के लिए।

बजकर 10 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। ये है आप ही का अपना उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज मेरे प्यारे सुनने वालों 17 तारीख जून है, बुधवार की रात है और वो भी साल 2026 मौका मिला है तो मैं दौड़ के चलाया यहाँ स्टूडियो में आपका सेवा करने के लिए। और आज भी सेवा हम करेंगे रात्रि में 9 बजे तक लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। मेरे प्यारे सुनने वालों बैक टू द फ्यूचर आज फिर एक बार हम बनाएंगे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद जी का ऑफ 12 देवानंद साहब जी इनके मूवीज से फिर एक बार बहुत ही सारे

0: और ये प्लेलिस्ट से निकालूंगा एक एक हीरे और आपके सेवा में हम पेश करने वाले हैं। तो तहे दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे सुनने वालों लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। ये प्रोग्राम फिर एक बार हम बनाएंगे। आपको स्वागत करते हुए आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। और जिस हाल में आप है, जहां पर भी है, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी को। आज ये प्रोग्राम सजा रहा हूं देवानंद साहब जी का। कुछ हफ्तों से हम बना रहे हैं और अगले हफ्ते जो इस महीना जून का आखिरी बुधवार होंगे 24 तारीख 24 जून, तो देवानंद साहब जी का आखिरी प्रोग्राम भी हम पेश करेंगे। बहुत सारी खूबसूरत मूवीज में इन्होंने काम किया है और उन मूवीज में कमाल के गाने और गाने कुछ इस तरह का जो हम पसंद भी करते हैं। आज भी जब भी ये नगमाएं चलती है आप गुनगुना लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं इनको सुनते वक्त। और सभी जाने पहचाने नगमाएं हैं जो आज सेवा में हम पेश करेंगे। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों स्टूडियो में आप अवश्य हमेशा की तरह ऐप कर सकते हो, वहां पर भी बातचीत हो सकते हैं। 020-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- व्हाट्सएप आएंगे और आपको जवाब ही यकीन मैं अब यकीन से मैं कह सकता हूं कि आपको भी मिलेगा। और यह दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों, आपकी फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपकी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन आप भी प्राप्त करना चाहोगे तो स्टूडियो में नहीं लेकिन आप दफ्तर को मेल कर सकते हैं या तार कर सकते हैं। तार करना चाहोगे तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप तार कर सकते हो। दफ्तर के तार पर 02409 0807 02409 0807। या तो कीजिए 24 घंटे 7 दिन लगातार किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल आप मेल करें info@ujala.net। आज का ये प्रोग्राम मेरे प्यारे सुनोला, आपको तो मालूम है हर एक घंटे पर इश्तिहारे हैं, देश विदेश का समाचार, मौसम क्या हाल क्या है और सड़क पर भी क्या हाल है, हम आपको सुनाते हैं हर एक घंटे पर। और आज भी अफसोस के साथ थोड़ा सा मृत्यु समाचार, मौत की खबरें भी पुकारा जाएगा उजाला रेडियो के जरिए, और वो भी 7 बजे की इश्तिहारों के बाद। बरिख्त फन ओवरलैड, नॉट अ कमर्शियल ब्रेक, फन सेफ हियर हियर ऑफ यू आर। तो मेरे प्यारे से रोलो, अगर आप तैयार हैं, मैं देखता हूं बेचैन है आप सभी के लिए गाने के लिए। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ गीत, ये दोनों मिलकर गाएंगे काफी पॉपुलर सॉन्ग, प्यार भरा रूठना मनाना सॉन्ग। कल्याण जी अनान जी है संगीतकार मेरे प्यारे सुनने वालों, जॉनी मेरा नाम का वो मशहूर नगमा आप तक पेश करने जा रहा हूँ। जॉनी मेरा नाम 1970 का मूवी है, नीह दिन सीवन तक। ओ मेरे राजा, देर से आई और दूर से आई लेकिन फिर भी वादा तो निभाया।
1: जॉनी
2: और नकली,
1: नकली भी जॉनी,
2: इसके अलावा भी कोई नाम है?
1: जी हाँ, जानी आपको ज्यादा पसंद है।

ओ मेरे राजा और खफा ना होना, देर से आई दूर से आई लेकिन मिडोरो वादा मैंने तो निभाया और देखो मैं दौड़े दौड़े चलाया। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, खूबसूरत रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर गाए और वो भी कल्याण जी अनान जी की ब्यूटीफुल म्यूजिक पर। जॉनी मेरा नाम फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का ओपनिंग सिलेक्शन ये 1970 में हतीन सईफ अतक का फिल्म से हमने नगमा को निकाले हैं। इनके छोटे भाई गोल्दी आनंद यानी कि विजय आनंद ने डायरेक्ट किया है और देव साहब जी विद ब्यूटीफुल हेमा मालिनी जी के साथ ये फिल्म में काम किया है, जिसमें प्राण साहब भी है, प्रेमनाथ जी, जीवन साहब जी, आयुष जौहर, पद्मा खन्ना, इफ्तिखार। शुभ रात्रि मेरे प्यारे सुनने वालों। ऐसा तो नहीं लगता है कि रात है, लेकिन घड़ी के अनुसार के मुताबिक नटूलक रात है। स्टूडियो के यहाँ बाहर तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है, सूरज अपना चेहरा अभी तक दिखा रहे हैं। हाँ थोड़ा सा हवा है लेकिन लेकर, और मैंने सुना कि बहुत गर्म गर्मी आ रहे हैं। ये तो प्लान भी इनक्राक है, पता नहीं क्या क्या होगा रे कल से। जैसे भी हो मेरे प्यारे सुनने वालों, आप नटूलक मात्रे एकल जो है एक्स्ट्रा पीने के लिए पानी का ये क्लीडिंग कटून टूटत हिल खुट और लोपनीत नित फल सो नित फील इन स्पन तू जाने तो ना कि हम बोले ला कि तू लेसी हो जा कुछ ना कर जाके लंगट ले जा अपन सोफा पे नहीं तो बदले को गुए नहीं मा तू जाने हम का बदल करे। बैक टू द फ्यूचर है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइफ एंड आर आई आर के स्टूडियो रतन राम से 8 मिनट बाकी है सरे 6 बजने में। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और बुधवार जब होते हैं तो 6 से 9 बजे दौरे चले आते हैं आपका सेवा करने, लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर जिनमें नगमाएं कुछ इस तरह का होते हैं, पुराने यादें जिसके साथ जुड़े हुए हैं और वो पुराने यादें हमेशा मुझे वापस और शायद आप सभी को भी वापस ले जा रहे हैं उन दिनों जब ये गीत मशहूर था और कुछ ना कुछ वाकया हुआ जिसके साथ इन नगमाओं के साथ आप फिर उस दिन को याद करते हैं। तो ये यादें जो हैं मिलकर हम ताजा कर रहे हैं। फिर एक बार एक फिल्म की ओर हम आपको ले चलेंगे, जबकि मेरा पैदाइश भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी ये फिल्म जो जिसका नाम है गाइड, तमाम नगमाएं लाजवाब बेमिसाल है मेरे प्यारे सुनने वालों, तमाम नगमाएं बेमिसाल है और ये फिल्म का एक गीत आज हमने चुन करके रखा है शैलेंद्र जी इनका लिखा हुआ गीत, दलेजन पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी गाएंगे। फिल्म का नाम है गाइड मेरे प्यारे सुनने वालों और मूवी 1965 का है, 1965 एस दे बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन संगीतकार।

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जहां भी ले जाए राहें हम संग है। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो वालों, ये खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग शैलेंद्र जी का लिखा हुआ रफी साहब जी ने गाए हैं, और वो भी सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। 1965 का मूवी फिल्म गाइड से हमने ये नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, और ये फिल्म भी इनके छोटे भाई विजयानंद गोल्डी आनंद जी ने डायरेक्ट किया है, वहीद रहमान के साथ मूवी में काम किया है। और इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ किशोर साहू भी है, अनवर हुसैन, जागीरदार रशीद खान, लीला चिटनिस, प्रवीण पाओ। ब्यूटीफुल मूवी मेरे प्यारे सुनो वालों, और गाने लाजवाब बेमिसाल।

1977 की ओर आपको ले चलते हैं। 1977 फिल्म का नाम डार्लिंग डार्लिंग। ये एक पॉपुलर सॉन्ग है जो देव साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है। ये मूवी में एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग जो किशोर कुमार ने गाए हैं आरडी बर्मन राहुल बर्मन के साथ और संगीत पर। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा।

से न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा और दिल में भी छुपा लूंगा। किशोर कुमार इनका गाया हुआ गीत आनंद बख्शी जी ने जो लिखे रोमांटिक सॉन्ग और वो भी आर डी बर्मन के साथ और संगीत पर गीत गाया गया है कि छुपा लूंगा। किशोर कुमार इनका गाया हुआ गीत आनंद बख्शी जी ने जो लिखे रोमांटिक सॉन्ग और वो भी आर डी बर्मन के साथ और संगीत पर गीत गाया गया है किशोर कुमार के जरिए। 1977 नेहतिन सेफ नंसेफ तक का फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से हमने नगमा को निकाले और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों गोगी आनंद का डायरेक्ट किया हुआ। और जिसमें देवानंद और सीमन तमन ने काम किया है, प्रेम चोपड़ा भी है, महमूद जीवन साहब जी नदीरा धीरज कुमार दुर्गा खोटे हेलन और बिरबल साहब जी। 5 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 6:05 ओवर द क्लॉक फॉर हाफ सेव बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और जैसे मैंने कहा अभी 7 बजे इश्तिहारे हैं और इश्तिहारों के बाद अफसोस के साथ भी थोड़ा सा मृत्यु समाचार मौत के खबरें हैं जो उजाला रेडियो के जरिए भी पुकारा जाएगा। नॉट कमर्शियल ब्रेक फन सेव यूर हियर ऑफ यू आर बरिख्त फन ओवरलाइडर 020-363-0008 स्टूडियो का व्हाट्सएप है। और कुछ लोगों ने ऐप किए हैं, अभी हम देखेंगे कि कौन है। और नटुलक अल्फास तंकिवेल, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतला दो ना। गीत का बोल मेरे प्यारे सुनो, एक रोमांटिक सॉन्ग है मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ जो किशोर कुमार गाएंगे सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। 1965 हम आपको वापस ले चलते हैं, नेहतिन फेवन सेस्टर फिल्म का नाम 3 देवियां।

ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी जी, इनका लिखा हुआ गीत किशोर जी ने गाकर सुनाए सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम तीन देवियां और फिल्म 1965 का है, निहतिन फैफन सिस्टर। अमरजीत ने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूसर भी अमरजीत साहब जी, देव साहब जी, और सिमी का एक फिल्म जिसमें नंदा भी है, कल्पना, सुलक्षणा जी, आयुष चौहड़, यंकी दास। रिमेंबर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक उजाला .nl एंड नॉट टू लुक उजाला रेडियो के सोशल्स जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, तू जाने दो। एक फिल्म का टाइटल सॉन्ग, ये गीत ना कभी कोई फरमाइश करेगा, ना फरियारी सॉन्ग है, ना शादी वाला सॉन्ग है, ना भाई बहन के सॉन्ग है, ऐसे कोई गीत नहीं, ऐसा एक गीत नहीं जो आप कह सकते हैं कि किसी के लिए मैं फरमाइश करूं। हाँ, अपने दुश्मनों के लिए अगर आपको दुश्मन है और उन दुश्मनों के लिए, या वो एक दुश्मन जो है आपका, व्हाट इट नीड होप, आप फरमाइश कर सकते हैं लेकिन गीत मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक फिल्म तमो एलिच, फिल्म बिल्कुल फ्लॉप मूवी, लेकिन फिर भी अगर देखा नहीं तो यही माफ कहेगा, जिस ऐसे नहीं कि फिल्म देखने लायक नहीं है, लेकिन बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म जो है फ्लॉप साबित हुआ है। फिल्म का नाम बुलिट और बुलिट का टाइटल सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं। गाने वाले किशोर कुमार, आनंद बख्शी जी ने गीत को लिखा और राहुल बर्मन, आर डी बर्मन संगीतकार। पेश करता हूं वो नगमा, बुलेट का टाइटल सॉन्ग।

देखो ये क्या है, इस बेनाम तेरा लिखा है, और वो दिखा रहे हैं उन्हें गोली, एक बुलेट। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं, और वो भी आर डी बर्मन के साझ और संगीत पर। 1977 का फिल्म बुलेट से हमने नगमा को निकाले हैं। फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गोल्डी आनंद यानी कि विजय आनंद है, देवानंद साहब जी, परवीन भाभी, कबीर बेदी, राकेश रोशन का एक फिल्म। उम्मीद और आशा करते हैं मेरे प्यारे सुनौलों की नगमाओं के साथ आप काफी मजा ले रहे होंगे। एक गीत की ओर आपको ले चलेंगे, ये फिल्म कहीं और चल का एक नगमा है। कहीं और चल 1968 का मूवी है, 1968। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ एक मस्ती भरी गीत, शंकर जयकिशन संगीतकार, रफी साहब जी की आवाज पेश करता हूं।

वो गुलाब भी खिलेगा शायद जिसका नाम है प्यार। ओ लक्ष्मी, ओ सरसू, ओ शीला, ओ रजनी। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो, शैलेंद्र जी इनका लिखा हुआ गीत रफी साहब जी ने गाकर सुनाए, और वो भी शंकर और जयकिशन के साज और संगीत पर। कहीं और चल फिल्म का नाम, नीह दी नाख्तन से 1968 का मूवी। फिल्म ये भी डायरेक्ट किया गया है देव साहब जी के छोटे भाई गोल्डी आनंद विजय आनंद जी के जरिए, और देवानंद आशा पड़ेख का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनोल, इस घंटे का आखिरी गीत आप तक पेश करने जा रहा हूं। इस गीत के बाद ब्रेक होंगे 7 बजे का, और तमाम सूचनाओं के बाद जैसे मैंने कहा प्रोग्राम में, अफसोस के साथ ही कुछ मृत्यु समाचार भी रहेंगे। आखिरी गीत जो है चलाने जा रहा हूँ किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, और राहुल बर्मन जिसका संगीतकार है। 1965 का मूवी वारंट से गीत निकालेंगे, प्रमोद चक्रवर्ती जी का डायरेक्ट किया हुआ, और देव आनंद और सिनतमान का मूवी। रुक जाना ओ जाना, जरा हमसे दो बातें करते जाना।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 91 साल की आयु में एनन निखंतखियार औत बेटी श्रीमती शर्ली गोपाल की मां, दामाद श्रीमान जगदीश गोपाल के सास सुदेश गोपाल, रेशमा शक्कौरी गोपाल और अजय गोपाल के नानी शालिनी गोपाल, विनोद चक्कौरी और शरोजना गोपाल की ननिया सास श्रेया, ईशिका, निखिल, ऐलाश, सरफयाश और शयाना गोपाल की पर आजी, रिशानी और रितिका शक्कौरी की पर नानी, अम्स्टर्डम लुवी क्रिस्पेंस रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भत्तू की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में पहले फ्लामिंगो स्ट्रात के निवासी थी। अम्स्टर्डम से परिवार गोपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 91 साल के आयु में एनन निखंतखियार औत बेटी श्रीमती शर्ली गोपाल की मां, दामाद श्रीमान जगदीश गोपाल के सास सुदेश गोपाल, रेशमा शक्कौरी गोपाल और

Gopal की ननिया सास, श्रेया, इशिका, निखिल, ऐलाश, सरफयाश और शयाना गोपाल की पर आजी, रिशानी और रीतिका शकोरी की पर नानी, अम्स्टर्डम लुई क्रिस्पेंस रात की रहने वाली श्रीमती एतवरिया गोपी भट्टू की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल बीफे के दिन में 3:30 बजे मोरखन दोंदरदाख हालफ फीर किए जाएंगे वैसखार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैग 272 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 57 51 45 75 06 57 51 45 75। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार गोपाल और परिवार गोपी और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: तभी आता हूँ, तुम इंतजार करना, जाना नहीं, समझी ना। सुन सुन सुन रे बलम, दिल तुझको पुकार।
1: सुन सुन सुन रे बलम, ये दिल तुझको पुकारे। शारदा जी और द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाजें, एक खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार शंकर जयकिशन, निकाले हैं मूवी 1966 निहतिन से संसद का मूवी प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत से हमने नगमा को निकाले। फिल्म जिसका डायरेक्टर शंकर मुखर्जी देव साहब जी ने काम किया है सहरा बानो के साथ, प्रेमनाथ शशिकला और दुर्गा खोटी मोराद साहब जी। मेरे प्यारे सुनोलो, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी को। बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं और आपको स्वागत करता हूं तहे दिल से। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब से फिर एक बार। लाइफ एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से प्रोग्राम बनाया जा रहा है और घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे से नौ 8 मिनट बाकी है सरे 7 बजने में। 8 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल्फ हो चला है। देव साहब जी का प्रोग्राम आज हम सजा रहे हैं और अगले हफ्ते इस महीने का जो आखिरी बुधवार होंगे 24 जून तो देव साहब जी का आखिरी प्रोग्राम भी हम सजाएंगे बनाएंगे आप सभी के लिए। इनके मूवीज से नगमाएं जो देव साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है, हमने हफ्तों से निकाल निकाल कर प्लेलिस्ट को सजाए हैं और उस प्लेलिस्ट से निकाल कर आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। बस यही उम्मीद और आशा के साथ प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि आप को पसंद आएगा और नगमाओं के साथ जिस तरह से हम, तो आप भी कुछ पुराने यादें जो इन संगीत के साथ जुड़े हुए हैं हम और आप मिलकर ताज़ा करते हैं हमेशा। व्हाट्सएप पर है मेरे प्यारे से नौलो कुछ लोग जो ऐप किए हैं, जैसे कि हार्लेम का आइलिन, आमसनाम सेंद्रम का प्रभा जी, इल्से जी, आइडन हेल्डर, सुशीला जी, आइट आमस्टलफीन, आईफी आइट आमस्टरडम, मिका आइडन हाग और मफराव एंड मनेर बिहारी आइट ब्रीडा। थैंक यू लेवल, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर जिसमें होंगे एक नगमा अब की बार फ्रॉम द मूवी हीरा पन्ना। मेरे प्यारे सुनने वालों, हीरा पन्ना 1976 का फिल्म है, निहतिन फिरन सीवंत और गीत जो है किशोर कुमार गाएंगे, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत है। राहुल बर्मन संगीतकार। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं तस्वीर उतारता हूं, पेश करता हूं।
2: जरा हंस के जरा और खिले।

0: मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरे हुए हसीनों का। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनो, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत किशोर जी ने गाकर सुनाए हैं, आर डी बर्मन के साज और संगीत पर। और हीरा पन्ना फिल्म का नाम, फिल्म इतनी है 3-4 and 7। देवानंद साहब जी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, ये मूवी बिग ब्लॉकबस्टर मूवी हीरा पन्ना। सीमा तमन और राखी के साथ मूवी में काम किया है। और इन सभी के अलावा रहमान साहब जी भी हैं, धीरज कुमार, जीवन साहब जी, ए के हंगल, सुधीर पैंटल, कन्हैया लाल, एन नचूलखा जी, मनमोहन ऑफ 12 फटाफट। उजाला रेडियो है ये, मेरे प्यारे सुनो लो, बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। देवानंद साहब जी के गाने, इन पर जो पिक्चराइज किया गया है मूवीज में, हम आप तक पेश कर रहे हैं। तो हीरा पन्ना के बाद 2 साल हम नीचे जाएंगे, 1972, मेरे प्यारे सुनो लो, ये गुलस्ता हमारा फिल्म का नाम, ये गुलस्ता हमारा से गीत निकालेंगे। वंस अगेन किशोर कुमार अब की बार लता जी के साथ मिलकर गीत गाएंगे, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, और वो भी एस दे बर्मन, सचिन दे बर्मन के साज और संगीत पर। गोरी गोरी गांव की गोरी गोरी पेश करता हूं, हियर ऑन योर ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओ अच्छे सुनो मेरी बात, सॉरी, अच्छे सुनो मेरी बात, किशोर कुमार और कोरस।
1: एक करी तो अरे ओ परिसो एरी नोखे आ रुक्सा अरे ओ डेंगा ए मुनमुन

है सुनो मेरी बात। एक बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनो, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और कोरस से आप सभी ने सुने हैं। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत और जिसका संगीतकार सचिन देव बर्मन, गीत हमने निकाले हैं मेरे प्यारे सुनने वालों 1972 का मूवी फिल्म ये गुलिस्तान हमारा। फिल्म अपनी हथिन ट्वीन से आत्माराम ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट जो किया है। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद और शर्मिला टैगोर का एक फिल्म जिसमें सुजीत कुमार भी है, आसरानी साहेब जी, प्राण साहेब जी, ललिता पवर और कौन है, रमेश देव, यंकी दास, कमिनी कौशल, राज मेहरा, कैस्टो मुखर्जी, मुराद साहेब जी, जोनी वोकर, डेनी डिंजोंगपा, इफ्तिकार और मनमोहन कोई और है और मैकमोहन कौन नहीं इसे जानते। हर एक मूवी में इनका नाम है मैक, लेकिन शोले में इनका नाम था साभा। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है, आठ मिनट गुजर चुके हैं और वो भी सरे 7:07 लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं। और मेरे प्यारे सुनो, आपको ये भी बतलाने की मेरा जो प्रोग्राम है कैसे कब मैं आऊंगा आपके लिए, आपको एंटरटेन करेंगे, आज हूं कल भी रहेंगे प्रोग्राम में लेकर। प्रोग्राम दिल की आवाज कल रात्रि को 8 बजे से या मिस्किन तक नहीं कुंभ मरत मुतकीफ के 8 बजे से हम प्रोग्राम सजाएंगे 3 घंटे लगातार। हियर ऑन यू आर दिल की आवाज, शनिवार 20 तारीख को हम नहीं रहेंगे, एक बैनर साथ रख ट्विन तखीजुनी इन द आफन नीट मैप लोकल प्रोग्राम आज सैटरडे नाइट फीवर। लेकिन अगले हफ्ते 24, 25 एंड 27 यानी कि बुधवार, गुरुवार और शनिवार, ये तीनों दिन रात्रि में प्रोग्राम हम सजाएंगे बनाएंगे आपके लिए। जो सनावन बेनिकर मोरख बेनिकरोग मैं दिल की आवाज कुमंड सातरा नीत, और अगले हफ्ते फोहन वेक दन बेनिकर खून अलदा, ठीक है। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे, वापस हम आपको ले चलेंगे 72 से हम जाएंगे निहंतिन फीरन सेस्तक के ओर 1964। फिल्म का नाम है शराबी और शराबी का एक हैप्पी सॉन्ग रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ निकालूंगा आप तक पेश करेंगे। रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी गीत मिलकर गाएंगे मदन मोहन के साज और संगीत पर। जाओ जी जाओ देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर और लुटेरे, क्या बात है।

या जाओ जी जाओ मेरे प्यारे सुनने वालों, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर और लुटेरे, नाइटिंगेल आशा जी और रवि साहब जी का ये हैप्पी छेड़छाड़ सॉन्ग, रजिन कृष्ण जी का लिखा हुआ मेरे प्यारे सुनने वालों, और संगीतकार मदन मोहन। फिल्म का नाम शराबी और मूवी 1964 का है, निहत इन्फ्रेंसिस राज ऋषि जी का डायरेक्ट किया हुआ, देव साहब जी का ये फिल्म मधुबाला के साथ इन्होंने ये मूवी में काम किया है। और मैं देखता हूँ देसी हैरानी भी है, ललिता पौर, राम मोहन भी है, सुलक्षणा रविकंठ और बद्री प्रसाद, हिरेंद्रू और चित्रा जी हटमार से भरूक डंकी वेल आपके आपके लिए, और अपने मोटर कार में सुन रहे हैं अमेर का जो टोनी डंकी वेल टोनी फोर एपियर यमुनी ऐप तैरने से तरह है, दोस्त तनी परकेर करके ऐप कर लिए फिर चला लिए, ठीक है। लेकिन बेहद खुशी है हम कि आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और ऐप के जरिए मुझे ये बता रहे हैं, और क्यों ना आप एंजॉय करेंगे। नगमाएं जो पिक्चराइज किया गया है देव साहब जी पर बहुत खूबसूरत है, चाहे वो नए हो इनके मूवीज या पुराने मूवीज, बहुत सारे खूबसूरत नगमाएं हैं जो इन पर पिक्चराइज किया गया है, और कारण ये भी है कि मैं इनका प्रोग्राम बना रहा हूँ आउट वीक, और अगले हफ्ते फाइनल एडिशन है देव साहब जी का जो हम सजाएंगे बनाएंगे हियर ऑन यू आर। कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा ना जा दिल तोड़ के, एक प्यारा सा नगमा जो काफी पॉपुलर है, लता जी और किशोर कुमार जो मिलकर गाएंगे, आनंद बख्शी जी ने लिखा और संगीतकार मेरे प्यारे सुनो राहुल डे बर्मन आर डी बर्मन पंचम दा हरे राम हरे कृष्ण फिल्म का नाम, और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों 1972 का है, 1972 खूबसूरत गीत हीरान यू आर पेश करता हूँ।

कांची रे कांची रे, प्रीत मेरी सांची, लता जी और किशोर कुमार की आवाजें, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर गाए हैं, आर जी बर्मन के साथ और संगीत पर। निहतिन त्वेन सेवन तक 1972 का मूवी फिल्म हरे राम हरे कृष्ण से हमने नगमा को निकाले। देव साहब जी ये फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर है। मुमताज भी है, सीना तमान, जूनियर महमूद, राजेंद्र नाथ, अंशला सखदेव, इफ्तखार, प्रेम चोपड़ा, किशोर साहू, राज किशोर, इंद्रानी मुखर्जी, सुधीर और टोनी भैया। आप इन रात आप ओतो में ना रह ले, हम वैसे ना पढ़ ली मान, तू हो अपन टाइन में बैठ के प्रोग्राम सुने हैं इत्मीनान से। वही हम सोची कैसे तू ऐप कर सके, गाड़ी चलावे और ऐप करे मार्सो इस टोनी नीत। एंजॉय टोनी। अगले गीत मेरे प्यारे सुनने वालों फ्रॉम द मूवी किनारे किनारे, और ये मूवी 1963 का है, निहतिन द्रियन सेस्त, और गीत जो हम आप तक पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी किनारे किनारे, देख ली तेरी खुदाई गीत का बोल, और ये फिल्म से जो गीत निकाल रहा हूँ, द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, तलत महमूद जी गीत गाएंगे। नया शर्मा जी का लिखा हुआ ये डर्ट भरा गीत है। जयदेव संगीतकार मेरे प्यारे सुनो, लो पेश करता हूँ गीत सेवा में, हियर ऑन यू आर।

देख ली तेरी खुदाई। डट भरे गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, बस मेरा दिल भर गया। द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, तलत महमूद जी की आवाज, नयन शर्मा जी का लिखा हुआ ये डट भरा गीत तलत साहब जी ने गाकर सुनाए हैं। जयदेव की साज और संगीत पर 1963 निहत इंद्रियन से सखका फिल्म किनारे किनारे से हमने नगमा को निकाले। और खास बात यह है कि तमाम नगमाएं जो ये मूवी में हैं, इनका लिरिक्स लिखा गया है नयन शर्मा जी के जरिए, क्योंकि ये फिल्म का भी प्रोड्यूसर है चेतन आनंद, जो देव साहब जी के बड़े भाई हैं। इन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है। देवानंद मीना कुमारी सुंदर गायक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो लो, इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं, उसके बाद 8 बजे के ब्रेक। ब्रेक के बाद नतुरलक आप सभी के सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे विद सम मोर ओल्ड सॉन्ग्स द 60s और द 50s का। और अगर वक्त रहा मार डेंगे नीच दखाव वीर तो रखना दया रसीवन। धीरे धीरे आप देख रहे हैं हम नीचे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं और इनके पुराने गीत और मूवीज की ओर। फिल्म का नाम बाजी, जिसमें से हम इस घंटे का आखिरी गीत निकालेंगे। ये फिल्म ओ बॉय ओ बॉय डी साउथ 1951 निहति नैनन फाइफ, हमारे प्रिय सहील लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत किशोर कुमार की आवाज में आप सुनेंगे, और जिसका संगीतकार है सचिन देव बर्मन। कि दिल ये क्या चीज है, फिल्म का जो प्रोड्यूसर और एक्टर एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया है, और गीता बाली, कल्पना कार्तिक, केएन सिंह, इन सभी ने देव साहब जी के साथ फिल्म में काम किया है। आखिरी गीत और मिलते हैं ब्रेक के उस पार मेरे प्यारे सुनने वालों।

जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में। या ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, मुनीम जी का ये नगमा, किशोर कुमार की आवाज, सहेल लुधियानवी जी हमारे प्रिय, इन्होंने गीत को लिखे और संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। मुनीम जी फिल्म 1955 का है नीट। और देखता हूं तो सुबोत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, बहुत ही खूबसूरत मूवी है ये फिल्म मुनीम जी, और गाने सभी लाजवाब बेमिसाल हैं, खूबसूरत रोल देव साहब जी का, और नालिनी जयवंत, प्राण साहब जी, निरूपा रॉय, अमिता। मेरे प्यारे सुनो, 11 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर, आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे, आपका सेवा हम कर रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट क्यूआर के स्टूडियो रतनाम से। बुधवार का ये पॉपुलर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर सेवा में हम पेश कर रहे हैं, रात्रि में 9 बजे आपका साथ हम देंगे, उसके बाद हम यहाँ स्टूडियो से रुखसत होंगे। और जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे सुनने वालों, कल 18 तारीख जून को आपका सेवा करने चले आएंगे, एंड इन प्रिंसिपल वन ऑफ 8 uur tot en met 11 uur, लेट्स वन इट दैट मार ऑफ

लेकिन हो सकता है कि हम 9 बजे भी शुरू करेंगे। माना तो इतिक नोखनी थे, जिस तरह से भी होंगे प्रोग्राम 3 घंटे का हम सजाएंगे आप सभी के लिए। शनिवार को 20 तारीख जून को हम नहीं रहेंगे लेकर प्रोग्राम सेहत रही नाइट फीवर लोकल का वो प्रोग्राम हम फिर पेश करेंगे अगले हफ्ते 27 यूनी को, जो इस महीने जून का आखिरी शनिवार है, जाकर पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो आज हूँ कल भी रहेंगे, शनिवार को नहीं। एंड फॉलोइंग वीक बेन कर वुंसडे डोनरडे सैटरडे देव साहब जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आज सजा रहा हूँ और अगले हफ्ते वुंसडे 24 यूनी को फाइनल एडिशन देव साहब जी का हम पेश करेंगे लाइव एंड आर आई क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर में। और आप सभी मजा ले रहे हैं मुझे मालूम है, लोग ऐप करके बता रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे अब इस घंटे में नगमाएं फ्रॉम द 60s एंड 50s पेश करेंगे, और अगर वक्त रहा या ना खा वो ईव जस्ट रील कोर्ट ईव थ्रू नंबर 70s। ठीक है, अकेला हूं मैं इस दुनिया में एक पॉपुलर सॉन्ग रफी साहब जी का गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, और वंस अगेन संगीतकार एस थे बर्मन सचिन देव बर्मन। बात एक रात की, फिल्म का नाम बात एक रात की, और ये फिल्म 1962 का है।

अकेला हूं मैं इस दुनिया में। रवि साहब जी का ये रोमांटिक सॉन्ग हमने आप तक पेश किया है। मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा और संगीतकार एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम बात एक रात की, बात एक रात की। 1962 शंकर मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। और ये फिल्म में काम किया है एवरग्रीन सुपरस्टार वहीदा, सॉरी देवानंद और वहीदा रहमान साथ ने दिए हैं ये फिल्म में। जूनी वॉकर, चंद्रशेखर असित सेन और जगदीश सेठी भी फिल्म में है। लेसर का सारदा, सेन मार्ट का पूनम और सूरनाम का अनिता। दामन्स थैंक यू लिवेल, धन्यवाद आपके एप के लिए चून करने के लिए। एंजॉय बैक टू द फ्यूचर जिसमें देवानंद साहब जी के नगमाएं हम पेश कर रहे हैं। अपनी तो हार एक तूफान है, अगले गीत का बोल है। एक डर भरा गीत है जहां तक मैं देखता हूं, डर भरा गीत शिकवा शिकायत सॉन्ग शैलेंद्र जी का लिखा हुआ। रफी साहब जी की आवाज में गीत को आप सुनेंगे और वो भी एस डी बर्मन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम काला बाजार, मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये फिल्म निहतिन सेसख का है। 1907 रफी साहब जी को पेश करता हूँ सेवा में।

अपनी तो हर एक आह तूफान है। गलेजिन पद्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, ये दर्द भरा गीत शिकवा शिकायत सॉन्ग शैलेंद्र जी का लिखा हुआ रफी साहब जी ने गाकर सुनाए हैं। सचिन देव बर्मन ने एसडी बर्मन के साथ और संगीत पर मेरे प्यारे सुनने वालों, काला बाजार फिल्म का नाम, फिल्म इतनी खतीन सस्तक मेरे प्यारे सुनने वालों 1907 का मूवी, देवानंद साहब जी प्रोड्यूसर और एक्टर ये फिल्म का, और डायरेक्टर इनके छोटे भाई गोल्डी आनंद विजय आनंद ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म में काला बाजार में देव साहब जी ने काम किया है वहीदा रहमान के साथ, नंदा भी है रशीद खान, छोटे भाई विजय आनंद भी है, किशोर साहू, लीला चिटनिस, मदनपुरी हेलन। कविता जी आइड बी कैपल न्यूयॉर्क सिटी, डंकेवेल धन्यवाद आपके ऐप के लिए, एंजॉय कविता। ऑल दैट प्ले फ्रोलक, कितनी दूर दूर लोग चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, और कविता जी हमेशा जब ही सुनते हैं ऐप करते हैं। डंकेवेल, तू रूप की रानी मैं तो चोरों का राजा, पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, और मिलकर गाएंगे शंकर जयकिशन के साज और संगीत पर द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया तलत महमूद और मेलोडी क्वीन लता जी। फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा और टाइटल सॉन्ग, ये फिल्म 1962 का है, नीहत इंद्वेन से टाइटल सॉन्ग को पेश करता हूँ, ईरान यू आर।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सिनेमा तू रूप की रानी मैं चोरों का राजा क्या तेरा मेरा प्यार निराला मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया तलत महमूद और लता जी की आवाजें हसरत जयपुरी जी इनका लिखा हुआ ये टाइटल सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं शंकर जयकिशन के साज और संगीत पर रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म 1962 का है निहतिन ट्विंस डायरेक्टर रवल साहब जी और देवानंद वहीदा रहमान हीरालाल जगदीश राज सुंदर मनोरमा का एक फिल्म घर की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुन लो ठीक सरे 8 का वक्त है 33 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे और बॉय ओ बॉय कुछ और भी दिलचस्प नगमाएं हैं जो 9 बजे तक आप के लिए हम पेश करने वाले हैं हम आपको ले चलते एक मस्ती भरी गीत की ओर एक गीत जो हम निकालेंगे फिल्म जिसका नाम है सोलवा साव ये फिल्म 1958 का है नहीं 58 साथी 58 का है हाँ जी सोलवा साव 1958 का मूवी मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत रफी साहब जी गाकर सुनाएंगे एस दे बर्मन के साज और संगीत पर कि ये तो है वो देखिए यही तो है पेश करता हूं
1: वो यही तो है

0: तो है वो,
1: यही तो है वो, हाँ यही तो है वो, देखिए यही तो है। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। सचिन देव बर्मन की साज और संगीत पर, फिल्म का नाम 16 साल और ये फिल्म 1958 का है। निहतिन अख्तन फैफ्तख, राज खोसला जी ने डायरेक्ट किया है, देवानंद वहीद रहमान इन दोनों का एक फिल्म जिसमें टुनटुन और सुंदर भी है। मेरे प्यारे सुनो, फिर एक बार आपको इतला दें कि कल रात्रि को प्रोग्राम हम सजाने आएंगे दिल की आवाज, और वो भी 8 बजे से 11 बजे। मारत कंसूमर सेन दतिकर फनीह तो 12 बिन तत्वीतिक नुखनी 100% सीकर। मैं काम में बिजी हूँ और कोशिश करूँगा वो काम खत्म करने का, उसके बाद तुरंत यहाँ हम स्टूडियो में हाजिर रहेंगे। मारत कंसूमर दतिक नुख तत ऊर्चे नोड़ है, जैसे भी हो मैं रहूंगा जरूर लेकर प्रोग्राम कल मोड़ 8 यूनी दिल की आवाज लेकर। और आने वाले शनिवार 20 नवंबर नीत मेट सैटरडे नाइट फीवर हम नहीं रहेंगे, एंड फॉलोइंग वीक दन बेन ik er weer woensdag 24 donderdag 25 en zaterdag 27 tino din हम रहेंगे लेकर आपका पॉपुलर और मनचाहत प्रोग्राम Back to the Future, Dil Ki Awaaz और Saturday Night Fever, Here on You Are, और सभी लाइफ है मेरे प्यारे सुनने वालों, सभी लाइफ हम बनाएंगे सजाएंगे, और अगर आप साथ देंगे तो और भी मजा आएगा। अगले गीत का बोल है आंखों में क्या जी, और दोनों जो मिलकर ये गीत गाएंगे है हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग और जिसका संगीतकार है एस देव बर्मन, सचिन देव बर्मन। 1957 निहतिन सेवनन फैफ्तख का फिल्म 9-2-11 से ये नगमा निकाल रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ हियर ऑन यू आर।

बादल, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी जी खाली खा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं। सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर, एस डी बर्मन के साज और संगीत पर, मेरे प्यारे सिनेमा 1957 का फिल्म 9-11 से हमने नगमा निकाले हैं। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर गोल्डी आनंद, विजय आनंद और देवानंद साहब जी और कल्पना कार्तिक का एक फिल्म, जीवन साहब भी है, शशिकला, ललिता पावर, मदन पुरी और रशीद खान। और कल्पना कार्तिक जी देव साहब जी के पत्नी। तो दोनों ने मिलकर ये मूवी में काम किया है और बहुत सारे और मूवीज में दोनों ने मिलकर काम किए। फिलहाल तो मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा गीत सुनाना चाहूंगा, इसलिए हम तुरंत प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। मैडम उतिकवल इफ स्पीकर, हमने क्या तैयार करके रखा है? अच्छा जी, वो नगमा, एक नगमा रफी साहब जी जो गाकर सुनाएंगे, शैलेंद्र जी इनका लिखा हुआ गीत है, संगीतकार शंकर और जय किशन, फिल्म का नाम लव मैरिज, और ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सिने वालों 1959 का है, निकाल रहा हूं ये नगमा रफी साहब जी की आवाज़।

ऐसे परी ये सुबह मस्ती भरी यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

0: कहां जा रहे हो किसी की निगाहों से। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो लो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग रफी साहब जी ने गाकर सुनाए। शंकर जयकिशन संगीतकार, मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम लव मैरिज, और लव मैरिज जो फिल्म है 1959 नीहति नीहनन फाइव तक का है। सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है ये फिल्म लव मैरिज, और देव साहब जी का फिल्म है विद माला सिन्हा हेलन अभी भट्टाचार्य। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम के एंड की ओर, मेरे प्यारे सुनने वालों, और हम आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। होता है एक गीत प्रेम धवन जी का लिखा हुआ, नहीं तो नहीं सही, लुधियानवी जी इनका लिखा हुआ गीत है, और एक नगमा जो मिलकर गाएंगे किशोर कुमार और गीता दत्त, वो भी एसते बर्मन सचिंद्र बर्मन की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम है जाल, मेरे प्यारे सुनने वालों, और जाल जो है 1952 का मूवी है। नीघंतीन थ्री एम फाइव तक पेश करता हूँ गीत दे भी चुके हम दिल नजराना।
1: नजराना दिल का

0: दिल का
1: दी भी चुके हम दिल का नजराना। गीता दत्त जी और किशोर कुमार की आवाजें, हमारे प्रिय सही लुडियानवी जी, इनका लिखा हुआ गीत रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं एस डी बर्मन के साज और संगीत पर। 1952 तक का फिल्म जाओ से हमने नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर गुरु दत्त और देव साहब जी और गीता बाली का एक फिल्म जिसमें केन सिंह भी है, जॉनी वॉकर। मेरे प्यारे सुनोल, आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ। इस आखिरी गीत के बाद हम यहाँ से रुक सकेंगे। उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का सजाया हुआ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, जिसमें थे बहुत सारे नगमाएं देव साहब जी पर जो पिक्चराइज किया गया है, आप सभी ने सुनते वक्त भी पसंद की है। हम आप सभी से कल मिलेंगे और ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर अगले हफ्ते फिर हम सजाएंगे और देव साहब जी का आखिरी प्रोग्राम हम बनाएंगे अगले हफ्ते। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। किशोर कुमार का एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, जिसका संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। निकालेंगे फिल्म प्रेम शास्त्र, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर बी आर इशारा और सिन्हतमन बिंदु और देव साहब जी का एक फिल्म। आई लव यू ऑल,

यहीं से शुरू किया जाता है वही प्रोग्राम उजाला कॉफी चाय मिदा शो। यू आर उजाला रेडियो, यहीं सुन वालों मैं हूं लॉयड महाबीर। एन हेले गुडमिदाग, वेलकम ऑन दिस वुंसडा 17 जूनी आ शाम का वक्त। कितना मोई वेर है ना, कितना बिसाल वेर हैगा। आज इस नाग 17 जूनी, आज बुधवार 17 तारीख जून का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुनने वालों। और आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मैथ आनंद चंद्रिका सिंह आज के समाचार के बारे में बहुत लुख्तग ऑनवर्ड पे हम आपसे बताने वाले हैं। नाउ एक सर्कल में जो ओवर माय गवर्ड आज है 17 तारीख जून। हेडलाइंस फ्रॉम वंडाग, होंडर्डन मेंसन नाम डेल अन अ स्टिले टोग ना हेट ट्रागिशे वर्केर्सओंगेवाल इन ज़ीलैंड वारबाय मेर्डरे स्लाख्टोफर्स फीलन। हेट WK फुटबाल ब्लाइफ नेदरलैंड बेज़िग हौडन ना हेट गेलैकस्पेल फान ओरांजे टेगे जापान। अनालिस्टे कैके वूरुइट ना दे वोलगेंडे ग्रूप्सवेडस्ट्रैड आनस्टाँडे ज़ाटरदाग ओम 7 उर। एन या, मेसी हेफ्ट गेस्पेल्ड मेट अर्जेंटिनिए आत्सेबेरे सेबेरे फ्रुकु फ्रुकु एन हाय हेफ्ट 3 केरे गेस्कोर्ड Toen na trillen, toen na de klikken, toen de klikken. Adviseurs van het kabinet pleiten ervoor Oekraïne na een toekomstig bestand sneller richting EU-lidmaatschap te begeleiden. Innovatie en technologische onafhankelijkheid staan centraal tijdens een grote high-tech bijeenkomst in Den Haag. Ha, Den Haag mee. De G7-landen hebben in Frankrijk opgeroepen tot het staakt het vuren in Libanon en spreken steun uit voor het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De G7 kondigt nieuwe steunmaatregelen aan voor Oekraïne, waaronder extra militaire ondersteuning en strengere sancties tegen Rusland. Het Rode Kruis waarschuwt voor mogelijke voedsel- en watertekorten als gevolg van een verwachte sterke El Niño-periode. Wereldleiders spreken steeds nadrukkelijker over energiezekerheid en alternatieve handelsroute nu de geopolitieke spanningen aanhouden. Goedemiddag Nederland, welkom bij Ujala's middag Coffee Chai Show. Aaj boedemar, de week is halverwege, ha? Beachhaftaiga. En misschien is dit precies het moment om even rustig adem te halen. Een kop koffie of chai erbij te pakken en samen te kijken naar wat er speelt in Nederland en de rest van de wereld. Mijn hoeloid Mahabir zometeen sluit hier aan. Anand Chandrika Singh. Fijn dat je luistert. उजाला रेडियो के प्रोग्राम में हम सुनने वालों के नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं और ये गाने वाला है राज गणेश के आवाज़ में हम आपको नगमा सुनाने को जा रहे हैं। सॉरी फॉर कि तो कि कोई जीवन साथी मिलल हैगा या तू मांगे कोनो जीवन साथी ई जीवन में तोर ना मिलल हैगा जीवन साथी तो दोबारा जन्म लिए तो शायद मिल जाएगा मोय जीवन साथी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। राज गणेश की आवाज में आप सुनने को जा रहे हैं। गरमा मोई से सुनिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा।

कितना मोहिगाना है, कितना मोहि से भी गाय से राज गणेश की आवाज में भी आपने सुने उजाला रेडियो पर सुन वालों पेश किया गया है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और इस जीवन में ना मिलेगा तो हम फिर जन्म ले में मिले खातिन उजाला रेडियो है। वेलकम ऑफ दिस वोंगजाखमिदा 17 तारीख जून का प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग आज का समाचार आपसे बताने वाले हैं कि क्या भयल हैगा या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एंड नतीलक है वो लुख्त खोने वाले, और आज है सेफ्टी यूनिट, बड़ा मोई दिन है आज। नेम ये कॉफी ऑफ चाय दबाए एंड लाइसर ना दिन में कि चलते चलते चलते चलते कभी ना अलविदा ना कहना, ना ना ना ना ऐसे ना करिए।

इगनवा जो इस तरह से सवन गाय से गया जैसे बनाए से गए म्यूजिकवा जैसे है गया इज गोन गवेल्डिग इट इज गोन या एन गनोट ओम नाउ टू लुस्टर चलते चलते इट इज अ बीट जैसी मार बिसाल बिसाल वालो प्रोग्राम उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुनते जाइए सुनते रहना आज का प्रोग्राम हम आपसे कल नहीं मॉर्निंग इज अमित हियर इन कॉफी चाय कल अमित जयराम रहेगा फ्रॉम 12 टू 10 एंड आई बेन देयर फ्राइडे वेयर मेट कॉफी चाय कुकू ऑफ व्हाट यू ओकर फ्रॉम विल मेक फ्रॉम दिस प्रोग्राम जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा रजेश गणेश की आवाज में फिर हम आपको सुनाते हैं इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं मौज रहिए है।

यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनने वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम, आप सुनते रहना। चेक ऑन वेबसाइट उजाला.nl हर एक काम काज के लिए।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

उजाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाना रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियो जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।